संबंधिता निर्दोष सर्वदा अष्टोत्तर शतमाला सर्वदा असावी गळा एकमुखी रुद्राक्ष आगळा पूजिता भाग्य विशेष पंचमुख षण्मुख अष्टमुख चतुर्दशमुख लक्ष्मीकारक सकल मंत्र सुफल देख रुद्राक्ष जप नित्य करिता नित्य रुद्राक्ष पूजन तरी केले जाणिजे शिवार्चन रुद्राक्ष महिमा।

वांगधारी भस्म चर्चिले शरीरी गज चर्म पांघूरला नेसला से व्याघ्रांबर गळा मनुष्य मुंडांसे हार सर्वांगी वेष्टित फणिवर

सावध करोनी गोष्ट सांगे, नृपश्रेष्ठा न सोडी धीर, ऐक एक सांगतो विचार, जई पंचभूते नभती समग्र, शशिमित्र नभते तई, नभता मायामय विकार, केवल ब्रह्ममय सा

गतिविध अहंकार होत शिव इच्छे करूनिया सत्वांशे निर्मिला पीतवसन राजांशे सृष्टिकर्ता द्रुहिण तमांशे रुद्र परिपूर्ण सर्गस्थित्यंत

असो यावरी ब्रह्मसुत अंतर्धान पावला आनंदमय शक्तिनंदन राये शतपद्मधन घेऊन तोषविला गुरु संपूर्ण ऋषि सहित जाता झाला। हे भद्रसेन आख्यान जे पढ़ती त्यास होय आयुष्य

कता पढ़ता घड़े पुण्य केले अनेक अभक्ष भक्षण सुरापान ब्रह्म हत्या एव महापाप पर्वत तत्वता भस्म होती श्र

कि हा कल्पद्रुम संपूर्ण इच्छिले फल देणार मृत्युंजय जप रुद्रानुष्ठान त्यासन बाधी ग्रह पीड़ा विघ्न पिशाच बाधा।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना, संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।

आइए सुनते हैं शैलेंद्र जी की भक्ति रचना। इसे संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने, गाया है मन्ना डे ने।

श्रोताओं सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना। इसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और स्वर है पंडित राजन और साजन मिश्रा जी का।

अंधिता निर्दोष सर्वदा अष्टोत्तर शतमाला सर्वदा असावी गळा एकमुखी रुद्राक्ष आगळा पूजिता भाग्य विशेष पंचमुख षण्मुख अष्टमुख चतुर्दशमुख लक्ष्मीकारक सकल मंत्र सुफल देख रुद्राक्ष जप नित्य करिता नित्य रुद्राक्ष पूजन तरी केले जाणिजे शिवार्चन रुद्राक्ष महिमा परम पावन

वांगधारी भस्म चर्चिले शरीरी गज चर्म पांघूरला नेसला से व्याघ्रांबर गळा मनुष्य मुंडांसे हार सर्वांगी वेष्टित फणिवर

गतिविध अहंकार होत शिव इच्छे करूनिया सत्वांशे निर्मिला पीतवसन राजांशे सृष्टिकर्ता द्रुहिण तमांशे रुद्र परिपूर्ण

रुद्रे उदक अभिमंत्रुन अभिषिंचन पुत्राकरी नित्य 10,000 आवर्तने पूर्ण क्षोणीपाळा करी सप्त दिन राये धरिले दृढचरण सद्गद होवोनी बोलत सकळ ऋषिरत्न मंडळ।

जिया सुता, ऐसा अति आनंद होत असता, तो अद्भुत वर्तले वसंत येत सुगंधवनी, की काशी क्षेत्रावरी स्वर्धुनी, की श्वेतोत्पले मृडानी, रमणलिंग अर्चिजे, की निर्दैवास सापडे चिंतामणी, की क्षुधिता पुढे क्षीराब्धी ये धावुनी, तैसा कमलोद्भव नंदन।

असो यावरी ब्रह्मसुत अंतर्धान पावला आनंदमय शक्तिनंदन राये शतपद्मधन घेऊन तोषविला गुरु संपूर्ण ऋषि सहित जाता झाला। हे भद्रसेन आख्यान जे पढ़ती त्यास होय आयुष्य संतती त्यासी कालन बाधे अंती व दोनी नेती शिवपदा। दशशत कपिला दान ऐकता पढ़ता घड़े पुण्य केले अनेक अभक्ष भक्षण सुरापान ब्रह्महत्या एव महापाप पर्वत तत्वता भस्म होती।

अध्याय जाण स्वरूप एकादश रुद्रांचे हा अध्याय करिता श्रवण एकादश रुद्रा समाधान की हा कल्पद्रुम संपूर्ण।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना, संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।

आइए सुनते हैं शैलेंद्र जी की भक्ति रचना। इसे संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने, गाया है मन्ना डे ने।

श्रोताओं सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना। इसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और स्वर है पंडित राजन और साजन मिश्रा जी का।